0: एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदित सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

her anden. कभी आपने गौर किया है कि घर के किसी शांत कोने में बैठा एक चेहरा बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। वो अनुभव, वो अपनापन जो सिर्फ हमारे बुजुर्गों के पास होता है। बुजुर्ग, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जिसमें बचपन की उंगली थामे हुए यादें हैं, डांट में छुपा हुआ प्यार है और हर मुश्किल में दिया गया सुकून है। हम अपनी जिंदगी की रफ्तार में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बार उन्हीं कदमों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। शायद जरूरत है बस थोड़ा सा ठहरने की और एक छोटा सा कदम उठाने की उनकी ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर हमारा कार्यक्रम घर आंगन, और आज है शुक्रवार, यानी ये है वो खास दिन जो हमने पूरी तरह समर्पित किया है हमारे बुजुर्गों को। जी हाँ, आज का कार्यक्रम है एक कदम बुजुर्गों की ओर। साथ ही दोस्तों, आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर पर। और आज आपके साथ इस सफर की हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए करते हैं आज के कार्यक्रम का आगाज।

दो रास्ते में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और देखिए, दिल ने दिल को पुकारा तो मुलाकात तो होनी लाजमी है, और ये मुलाकात आपके साथ हमारी हो रही है। कहाँ? जी हाँ, कार्यक्रम जो शुक्रवार को हम विशेष तौर पर अपने बुजुर्गों को समर्पित करते हैं, तो ये कार्यक्रम है एक कदम बुजुर्गों की ओर। और देखिए, हम आपके साथ में हर दिन बहुत एक बेशकीमती बात आपके साथ साझा करते हैं। किस बारे में? जी हाँ, हमारी संस्था आकाशवाणी के बारे में। इस वर्ष ना आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण कर रही है। 9 दशकों की इस यात्रा में आकाशवाणी ने केवल समाचार, संगीत और कार्यक्रम ही नहीं दिए, बल्कि भाषा, उच्चारण और संवाद की एक समृद्ध संस्कृति भी विकसित की है। आकाशवाणी को लंबे समय से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की शुद्ध उच्चारण और संतुलित प्रस्तुति के लिए एक आदर्श संस्था माना जाता रहा है। स्पष्टवाणी, संयमित शब्द चयन और गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति इसकी विशेष पहचान रही है। एक समय था जब लोग शब्दों का सही उच्चारण सीखने के लिए आकाशवाणी के समाचार और कार्यक्रम ध्यान से सुना करते थे। वैसे वो काम आज भी किया जाता है ना? और बोलने की शालीनता और भाषा की सादगी ने इसे श्रोताओं के मन में एक विशेष स्थान दिलाया है। आज जब संवाद के माध्यम तेज और अनौपचारिक होते जा रहे हैं ना, तो ऐसे समय में आकाशवाणी हमें यह याद दिलाती है कि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और संवेदनशीलता का भी परिचय है। शब्द जब शुद्ध हो, स्वर जब संयमित हो, तो संवाद केवल सुना नहीं जाता, सम्मान के साथ स्वीकार भी किया जाता है ना?

0: 90.
1: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। और देखिए हम लोगों का आपके साथ जो रिश्ता है वो कायम होता है आपकी ईमेल के माध्यम से। और ईमेल आप हमें कहाँ भेजते हैं? जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com। इंतजार है आपकी बातों का, आपकी राय का, आपकी शिकायतों का और आपकी प्यार भरी बातों का। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, है ना? कुछ लोग उम्र गिनते रहते हैं और कुछ लोग हर उम्र में जीना सीखते रहते हैं। सफेद बालों के साथ भी जिनकी आंखों में चमक बची रहती है वही लोग सच में जीवन का आनंद लेना जानते हैं। बढ़ती उम्र जीवन का अंत नहीं बल्कि एक ऐसा पड़ाव है जहाँ इंसान धीरे धीरे खुद के और करीब आने लगता है। जिम्मेदारियों की भागदौड़ थोड़ी कम होती है और मन छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस करना सीखता है। आज अनेक वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं दोस्तों जो इस उम्र में भी ना पूरे उत्साह के साथ जीवन जी रहे हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है बुजुर्गियत की, कि आप अपनी उम्र को स्वीकार करना सीखते हैं। आप जिस भी उम्र में हो अपनी उम्र को स्वीकार करें, गरिमा के साथ स्वीकार करें, क्योंकि आप इस जीवन को जी रहे हैं, है ना? और देखिए हम बात करते हैं कि बहुत उत्साह के साथ हमारे बुजुर्ग अपने जीवन को जी रहे हैं, तो उनमें से कोई सुबह की सैर को अपनी आदत बनाए हुए है, तो कोई संगीत में मन लगाता है, कोई बागवानी में सुकून ढूंढता है, तो कोई नई तकनीक सीखकर दुनिया से जुड़ा हुआ है। कभी पुराने दोस्तों से बातें करते रहनी चाहिए, कभी अपने मन का कोई शौक फिर से शुरू करना चाहिए, या बस शाम की चाय के साथ डूबते सूरज को निहार लीजिए अपने जीवन साथी के साथ। ये छोटी छोटी बातें जीवन को फिर से ताजा कर देती हैं। आखिर उम्र तो कैलेंडर के पन्नों पर बढ़ती है ना, जीवन तो दिल से जिया जाता है। इसलिए उम्र को दराज में रखिए और मुस्कुराहट को अपने चेहरे से दूर मत जाने दीजिए, क्योंकि दिल जवान तो जिंदगी जवान, है ना?

0: द ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ शरद कुमार की आवाज में ये गीत। दोस्तों, उर्दू शायरी की दुनिया का एक उजला अध्याय कल स्मृतियों में दर्ज हो गया। मशहूर शायर पद्मश्री से सम्मानित बशीर बद्र साहब के निधन से साहित्य जगत ने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जिसने मोहब्बत, रिश्तों, तन्हाई और इंसानियत को बेहद सादगी और गहराई से शब्द दिए। उनकी शायरी की खासियत यह थी कि वे सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनके अशआर किताबों तक सीमित नहीं रहे बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। बशीर बद्र साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका एक बहुत मशहूर शेर भी याद आता है कि अजीब शख्स था, आंखों में ख्वाब छोड़ गया, वो मेरी मेज पे अपनी किताब छोड़ गया। बशीर बद्र साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके अल्फाज और उनकी शायरी आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उनका एक और गजल आपके सामने रख रही हूँ। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों की लौ से सितारों की जौ तक, चिरागों की लौ से सितारों की जौ तक तुम्हें मैं मिलूंगा जहाँ रात होगी। जहाँ जहाँ वादियों में नए फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बशीर बद्र साहब, आपको हमारी श्रद्धांजलि।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: स्वागत है दोस्तों कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। हमारे साथ हमारे एक श्रोता जुड़े हैं और ये है हमारे साथ उग्रसेन यादव, नई दिल्ली से जुड़े हैं, लिख रहे हैं, आपको मेरा दिल से नमस्कार सोनाली जी। आपको मेरा नमस्कार उग्रसेन जी। और लिखते हैं कि आपकी बातें इस उम्र में भी सीख देती हैं। और लिख रहे हैं कि इस उतार चढ़ाव भरे जीवन में बहुत सारी अच्छे खराब अनुभव से परिपूर्ण है, पर जो जिस टाइम सीख मिले उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। सही बात है, बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में स्वीकार्यता को लेकर चलेंगे, जो चीज़ जहाँ से मिली उसे ग्रहण करेंगे, तो जिंदगी में हम लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ साझा करते हैं।

चीजों की जानकारी। आज ना दोस्तों, तकनीक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि वरिष्ठ नागरिक भी डिजिटल सुविधाओं से आसानी से जुड़ सकें और उन्हें जरूरी सेवाएं सरलता से उपलब्ध हो, है ना। और इसी दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 22 मई 2026 को जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड की शुरुआत की है। अब जीवन ऐप जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार किया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं, आपातकालीन सहायता सेवाओं, वरिष्ठ नागरिक गृहों और अन्य जरूरी सुविधाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये ऐप जो है ना, ये वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरल रूप में विकसित किया गया है। और आपको क्या करना है, इसका उपयोग करने के लिए आपको अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करना होगा और अपने मोबाइल नंबर के जरिए आप इस ऐप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं या उनके जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो आवश्यक सेवाओं, योजनाओं और सहायता से जुड़ी जानकारी इस ऐप के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो शतायु डैशबोर्ड है ना, वो बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े प्रशिक्षित केयर गिवर्स यानी सहायकों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और इसके माध्यम से जो देखभाल सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, बढ़ती वरिष्ठ नागरिक आबादी के बीच ये पहल तकनीकी और संवेदनशीलता को साथ लेकर चलने की एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है, है ना। आप भी इस बात को मानेंगे ना, क्योंकि बदलते समय में तकनीक केवल सुविधा नहीं, सहारा भी तो बन सकती है। तो आइए ना, आप सभी इस ऐप का और इस डैशबोर्ड का जरूर इस्तेमाल करें, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं और जितनी हो सके उतनी सहायता आप इन तकनीकों के जरिए ले सकते हैं। और फिर क्या करना है, अच्छे अच्छे गाने भी सुनने हैं। कहाँ? FM गोल्ड 100.1 MHz।

दरअसल मैं कभी कभी में आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये बहुत प्यारा सा गीत। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, और बहुत सी शख्सियतें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण छोड़ जाती हैं, बहुत प्रेरक होती हैं और बहुत प्रेरणा देती हैं। ऐसी एक शख्सियत है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन से साबित कर देते हैं कि प्रकृति से प्रेम केवल शब्दों से नहीं कर्मों से होता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायी शख्सियत है केरल के अलप्पुझा जिले के 92 वर्षीय कोलकायल देव की अम्मा, जिन्हें 25 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण लोग उन्हें प्रेम से फॉरेस्ट ग्रैंडमा या पेड़ों की अम्मा भी कहते हैं। देव की अम्मा का जीवन किसी बड़े अभियान से नहीं दोस्तों, बल्कि एक व्यक्तिगत संघर्ष से बदलना शुरू हुआ। लगभग ना 4 दशक पहले एक दुर्घटना में पैर घायल होने के बाद वे धान के खेतों में काम नहीं कर पा रही थी। तब उन्होंने अपने घर के आसपास पेड़ लगाने शुरू किए। धीरे धीरे उनका यह प्रयास जो है ना, वो एक घने हरित क्षेत्र में बदल गया। आज लगभग 4.5 से 5 एकड़ क्षेत्र में फैले उनके तपोवन में 3,000 से अधिक पेड़ और पौधे हैं, जिनमें कई दुर्लभ स्थानीय और औषधीय प्रजातियां भी शामिल हैं। उन्होंने वर्षा जल संरक्षण, प्राकृतिक खाद और पारंपरिक तरीकों से इस पूरे वन क्षेत्र को विकसित किया है। देव की अम्मा का ये जो जीवन है, यह संदेश देता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि धैर्य, निरंतरता और प्रकृति के प्रति प्रेम से भी संभव है। जिस उम्र में लोग विश्राम की बात करते हैं, उस उम्र में भी ये धरती को हरा भरा करने में लगी है। सचमुच कुछ लोग पेड़ नहीं लगाते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए सांसें बचा कर

होटल में ममता में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। देखिए हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, ये हैं सुदर्शन मुखी, इनके साथ है अनीता मुखी और सिमरन मुखी, ये हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि इन्हें गाने और बातें और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ इंसान धीरे धीरे ये समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी सुविधा क्या है, बिना दर्द के चल पाना, चैन की नींद सो पाना और अपने लोगों के साथ हंसते हुए कुछ पल बिता पाना, है ना। बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य केवल दवाइयों का विषय नहीं रह जाता, ये जीवन जीने के ढंग से जुड़ जाता है। समय पर उठना, थोड़ा टहल लेना, मनपसंद भोजन में भी संतुलन रखना और सबसे जरूरी मन को बेवजह की चिंता से दूर रखना। कई बार बुजुर्ग अपनी तकलीफें इसलिए नहीं बताते क्योंकि वे परिवार को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कभी ठीक नहीं होती। छोटी परेशानी हो या नियमित जांच तो उसे टालना नहीं चाहिए। एक और जरूरी बात, कभी भी अकेले ना रहें, अपने मित्रों से बात करें, पड़ोसियों से मिलना, बच्चों और नाती पुत्रों के साथ समय बिताना मन को हल्का रखता है। और ना एक चीज और बताएं, घर के ना काम करते रहिए, थोड़ा बहुत काम करने से ना मन भी लगा रहता है और शरीर भी हिलता डुलता रहता है। अपने मन का खाना बनाइए, दूसरों को भी खिलाइए और खुद भी खाइए। फिर एक और ना आपके साथ एक और जरूरी बात ये भी है कि अपने दिन की शुरुआत योग से कीजिए, अच्छे भजन सुनिए या फिर सुबह की सैर से करिए और बहुत छोटी छोटी आदतों से अपने आप को सक्रिय और खुश बनाए रखिए, क्योंकि आखिर जीवन की सांझ बेला में सबसे बड़ी बात केवल लंबी उम्र नहीं बल्कि स्वस्थ और सम्मान के साथ जीना है। क्योंकि जब स्वास्थ्य साथ होता है तो उम्र बढ़ने पर भी जीवन बोझ नहीं लगता, अपना लगता है। और हमेशा स्वस्थ रहने का एक और जो सबसे जरूरी माध्यम है वो है म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी आपको यहाँ नजर आएगी कहाँ पर, FM गोल्ड में। तो आइए सुनते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।

तो आप हमारा ले लेते हैं अपनी बातों से। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं इदरीस सैफी जी, और वो कह रहे हैं कार्यक्रम हम भी सुन रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहिए। और देखिए दोस्तों, ये जो गाना आप सुन रहे थे ये था मिस्टर नटवरलाल फिल्म से, और गाया किसने था, किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर ने। अगर हम बात करें कि एक समय था जब दादा दादी को मोबाइल चलाना बहुत मुश्किल लगता था, फोन केवल बात करने तक सीमित था और ऑनलाइन दुनिया उनसे काफी दूर दिखाई देती थी, लेकिन समय के साथ अब तस्वीर बदल चुकी है। आज कई हमारे जो घर के हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने मोबाइल पर वीडियो कॉल करना सीख रहे हैं, ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं, पुराने दोस्तों से जुड़े हुए हैं और अपने बच्चों पोते और पोतियों की तस्वीरें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग भजन सुनते हैं, पुराने गीत खोजते हैं, तो कई लोग अब ऑनलाइन योग और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी भी तो लेते हैं। और शुरुआत में ना उन्हें थोड़ी बहुत उलझन लगी, लेकिन जब परिवार धैर्य के साथ उन्हें सिखाता है तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कई बार ना जो हमारे नाती पोते होते हैं वो उनके सबसे अच्छे डिजिटल शिक्षक बन जाते हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया से जुड़ते समय सावधानी भी बहुत जरूरी है। अनजान लिंक, फोन कॉल या बैंक

जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। परिवार के लोगों का मार्गदर्शन इस मामले में बहुत मददगार हो सकता है। असल में तकनीक की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वह दूरियों को थोड़ा कम कर देती है। और सच कहें तो जब दादी पहली बार वीडियो कॉल पर मुस्कुराते हुए कहती है ना कि हाँ अब मुझे सर्व आ गया, तो केवल मोबाइल नहीं पूरे घर का मन खिल उठता है ना। और बस हमारा मन भी खिलता है आपके साथ बात करके। तो आइए सुनते हैं चलते चलते हमारे कार्यक्रम का ये एक और गाना।

दोस्तों, ये था हमारा आज का शुक्रवार का विशेष कार्यक्रम एक कदम बुजुर्ग की ओर। और अब मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सुनाने को दीजिए आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

0: 당근.
1: 아프게 아스트와 아프게 역세트와 세 주라. 아프가 갈 앙근.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च

0: आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants. Underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty, a bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joymalia Bagchi said orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said the order of bail or

क्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, कुछ फिल्में वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं और कुछ फिल्में वक्त को ही अपने नाम कर लेती हैं। आज एक ऐसी ही मास्टरपीस की बात जिसने हिंदी सिनेमा की परिभाषा बदल दी। जी हां, आज बात नौकेतन फिल्म की अमर कृति गाइड की। आर के नारायण साहब द्वारा मशहूर उपन्यास एंटरटेनिंग द गाइड और उसे पर्दे पर उतारा कमाल के निदेशक विजय आनंद जी ने। देवानंद साहब का वो अंदाज, वहीदा रहमान जी का वो ग्रेस और सचिन देव बर्मन यानी कि दादा का वो संगीत जिसे अभी आपने थोड़ा सा सुना, और इस फिल्म का हर एक कोना एक जादू है। आइए सीधे चलते हैं उस पहली मुलाकात की तरफ जहां राजू गाइड की जिंदगी में रोजी आती है।

श्रोताओं, गाइड सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये कहानी थी बंधनों से आजादी की, कला की और इंसान के भीतर छिपे भगवान तक के सफर की। जब रोजी अपने घुंघरू बांधती तो वो सिर्फ नाचती नहीं, वो अपने समाज की बेड़ियों को तोड़ती है, और जब वो गाती है ना तो लगता है जैसे जिंदगी खुद झूम रही हो।

क्या बात है, श्रोताओं इस गाने को सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज और वहीदा जी का वो बेबाक डांस। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब राजू अपनी बनाई दुनिया में खो जाता है। प्यार, धोखा, गलतफहमी और फिर जेल का सफर। फिल्म का दूसरा भाग हमें एक अलग ही दर्शन की ओर लेकर जाता है जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के चलते महात्मा बन जाता है।

श्रोताओं, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में जो दर्द इस गाने में है वो सीधे दिल में उतर जाता है और छूता है दिल को। राजू का अकेलापन, उसकी तड़प, विजय आनंद ने इस फिल्म के क्लाइमेक्स को जिस सूफिया और जिस अंदाज में पेश किया है वो आज के दौर के डायरेक्टर्स के लिए एक टेक्स्ट बुक की तरह है। मौत और आत्मा का वो संवाद, न सुख है न दुख है न दीन है न दुनिया, सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं और सिर्फ मैं हूं।

0: हम अपने श्रोताओं को ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे और आपको इस फिल्म के दो गीत जरूर सुनवाएंगे। और आइए आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है, जो हर दम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। ठंडे मन से एक बात सुनोगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो, तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूँ।

विक्रम इनकी फिल्म से, और इसी कार्यक्रम को हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं। और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें हैं अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, ऐसे ही और भी श्रोता हैं हमारे, संजय साहू, धर्मेंद्र चीपा, लालगिरी, बबलेश पवार, प्रकाश वर्मा, स्वर्ण सिंह, सुरेश यादव, अमोल टाडे, राजकुमार डूडी, देवनारायण साहू, संजय और अनिल मोहन, बिट्टू, और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम को इतने प्यार से सुन रहे हैं। और चलते चलते आपको इस कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनवाते हैं।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के खेतर च एक इतिहासक उपलब्धि हासिल करदिआं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तहत 40 लाख घरां दीआं छतां ते सोलर पैनल लगाए। सर्वोच्च अदालत ने देश दीआं सारीआं उच्च अदालतां नूं अपने फैसले राखवें रखण दे 3 महीनिआं दे अंदर अंदर उस नूं सुनाउण दे निर्देश दित्ते। भारत ते कैनेडा ने व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते तहत इस साल दे अखीर तक गल्लबात पूरी करन दी अपनी वचनबद्धता दोहराई। पंजाब दीआं 102 स्थानक इकाइयां लई होईआं चोणां वास्ते वोटां दी गिणती सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ जारी। एशियन अंडर 20 एथलैटिक चैंपियनशिप च भारतीय अथलीटां ने ट्रैक ते फील्ड मुकाबलिआं च शानदार प्रदर्शन कीता। आईपीएल क्रिकेट विच अज दूजे क्वालीफायर मुकाबले च राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला न्यू चंडीगढ़ विखे शामी 7:30 गुजरात टाइटन्स नाल होवेगा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के खेत्र में एक इतिहासक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दसा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत हुण तक 40 लाख घर छतां ते सोलर पैनल लगाए गए ने। उन्हां कहा कि यह योजना सिर्फ एक नवीआउणयोग ऊर्जा पहलकदमी नहीं सगों नागरिकां नूं बिजली खपतकारां तों बिजली उत्पादकां च बदल रही है। यह योजना परिवारां नूं बिजली दीआं लागतां घटाउण, सरकारी सबसिडियां का फायदा उठाउण

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफटॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संग मील तय किया है। आईएमडी ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसलों को 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसलों को सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि जाती आजादी के मामलों में तेज रफ्तारी से किए गए फैसलों की जरूरत होती है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की दरखास्तों में फैसले उसी रोज सुना देने चाहिए और अगर उन्हें महफूज रखा जाता है तो फिर उन्हें अगले ही दिन सुना देना चाहिए और

0: भारतीय मौसमियात महकमा IMD ने मुल्क में इस साल जून से सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिश की पेशगोई की है। 2026 के मानसून के लिए दूसरे मरहले की ज्यादा दिन की पेशगोई करते हुए IMD ने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान मामूल की बारिश होगी। उन्होंने मजीद कहा कि शिमाल मगरिब वस्ती और जनूबी जजीरा नुमा भारत में इस साल जून और सितंबर के दरमियान मामूल से कम बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कम से कम 6 कारकुन हलाक हो गए। ये लोग देर रात एक तूफान के दौरान एक जेर तामीर पुल गिर जाने के हादसे में हलाक हुए हैं। ये पुल मोरा कंद्र से कंदौर गांव को मिलाता है, जो बेतवा दरिया पर तामीर किया जा रहा है। ये हादसा कल रात तकरीबन 2 बजे पेश आया, जब कुछ कारकुन बारिश के दौरान एक हाइड्रा मशीन के नीचे खड़े थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा सरकार इंटेल और 3DGS को भारत में सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक करारदाद पर दस्तखत करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इको निजाम मजीद आगे बढ़ेगा। 2026 की एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एथलीट्स ने ट्रैक और फील्ड मुकाबलों में कई रिकॉर्ड बनाए। खवातीन के 100 मीटर मुकाबले में निपम ने 11.62 सेकंड की टाइमिंग के साथ कांसे का तमगा जीता। वो चैंपियनशिप के इस मुकाबले में तमगा जीतने वाली 25 साल भारत की पहली खातून बन गई हैं। नितिन गुप्ता ने 5000 मीटर के रेस वॉक में खिताब जीता और खवातीन की ट्रिपल जंप में साधना रवि ने 12.78 मीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। IPL क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यदवेंद्र सिंह बैन अल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना करेगी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया है। PM सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफ टॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संग मील तय किया है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा हासिल किया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Nipam wins bronze in women's 100 meter at under 20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. We have a report.
2: The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to the litigants, underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi said that orders in the bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day, issuing a slew of directions.

0: न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्ध

0: सफलता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा

0: अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
1: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा

0: आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
1: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दर्शक 35 आकाशवाणी दिल्ली का ना नेशनल न्यूज सर्विस 24x7 प्रोग्राम ऑनलाइन मीडियम एफ दोन एफ एम इकेद आकाशवाणी करगिलन वास्पोत उत्सव कसता एन सी आर टी ना सी आई ई टी स्पोन्सर्ड प्रोग्राम उमंग प्रचुगेत।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजाति

0: प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
1: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है
0: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
0: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
0: जी,
1: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
0: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
1: काले गुलाब?
0: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
1: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है
0: जी,
1: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है
0: जी।
1: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
0: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है
0: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातःकाल सबसे तीव्र मानी जाती है क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी वो तो है,
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है
0: जी।
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है, गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का
1: जी,
0: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा

0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता।
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते।
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
2: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए

0: सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां 2 दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम 2 दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूच संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था।

0: कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
2: जय महाकाली, महाकाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
3: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
4: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: मीडियम वाइफ दोन एफ एम एक आकाशवाणी करगिल सुमछेनु कसता आकाशवाणी दिल्ली कना फितो हेतु सोतगा सोपा उर्दू सर्विस प्रोग्राम रिलेवेत रिलेला डांबा सत

0: किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मयार नहीं हो सकता। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफटॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा समय मील तय किया है। भारत और कनाडा ने साल के आखिर तक सीईपीए बातचीत मुकम्मल करने के अजम का इरादा किया है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांस्य का तमगा हासिल किया है। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसलों को 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसलों को सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि जाती आजादी के मामलात में तेज रफ्तारी से किए गए फैसलों की जरूरत होती है, जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की दरख्वास्तों में फैसले उसी रोज सुना देने चाहिए और अगर उन्हें महफूज रखा जाता है तो फिर उन्हें अगले ही दिन सुना देना चाहिए और अपलोड कर देना चाहिए। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया।

0: आज कहा है कि भारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक मजबूत मईशत के तौर पर उभरा है और इस्लाहात और साजगार पॉलिसी की बदौलत टेक्सटाइल शोबों में तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत टेक्सटाइल मार्केट 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बकदर है और हुकूमत इसे 2030 तक 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तक ले जाने के लिए काम कर रही है। एयर इंडिया परवाजों में तात्कालिक की वजह से इसराइल में रिहायश पजीर 40,000 से ज्यादा भारतीयों में तशवीश का माहौल है, जो जाती या पेशा वराना वजूहत से या फिर खत्ते में जारी या गैर यकीनी सूरत हाल से मोफर की तलाश में भारत आना चाहते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने आज अकवा मुतहदा की अमन कायम करने वाली अफवाज के बैन अवी दिन के मौके पर दुनिया भर में अमन कायम करने वाली यूएनएम फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कम से कम 6 कारकुन हलाक हो गए। ये लोग देर रात एक तूफान के दौरान एक जेर तामीर पुल के गिर जाने के हादसे में हलाक हुए हैं। 2026 की एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एथलेटिक्स ने ट्रैक और फील्ड मुकाबले में कई रिकॉर्ड बनाए। खवातीन के 100 मीटर मुकाबले में निपम ने 11.62 सेकंड की टाइमिंग के साथ कांसे का तमगा जीता। वो चैंपियनशिप के इस मुकाबले में तमगा जीतने वाली 25 साल में भारत की पहली खातून बन गई है। नितिन गुप्ता ने 5,000 मीटर के रेस वॉक में खिताब जीता और खवातीन के ट्रिपल जंप में साधना रवि ने 12.78 मीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ चांदी का तमगा जीता। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तैद तलबा के तहफ्फुज़ का यकीन दिलाया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफ टॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा सरमील तय किया है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल की एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा हासिल किया है। खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

आशु भोसले की आवाज में ये कलाम अभी आपने उमराव जान फिल्म से सुना। अब सुनिए भूपेंद्र को, फिल्म है बाजार।

आशा भोसले की गाई हुई इस गजल के साथ ही जो आपने सुनी मजदूर फिल्म से, आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। समय गुज़श्ता रोज उर्दू के मारूफ शायर डॉक्टर बशीर बद्र इस दारे फानी को अलविदा कह गए। उर्दू सर्विस की जानिब से पेश है उर्दू अदब के इस दरख्शां सितारे के नाम पुरखलूस खराज अकीदत ये ताजियती प्रोग्राम।

मेरे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। समय एक ऐसा शख्स इस जहां से उठ गया जिसने पीढ़ियों को अपने खूबसूरत दिलगुदाज अशार से मुतासिर किया। उनकी शायरी कभी नगमा बनकर तो कभी जिंदगी का फलसफा बनकर हमारे इर्द गिर्द सांस लेती रही। उस शख्स का नाम है डॉक्टर बशीर बद्र। बशीर उर्दू के उन शोरा में से थे जिन्होंने शायरी को सहल अंदाज में लोगों तक इस तरह पहुंचाया गोया सबके दिल की ही बात हो, और अपने इसी अंदाज या इसी उसलूब की बदौलत वो हर खास आम के दिल की जबान बन गए। उनका चले जाना गोया शायरी के एक मुकम्मल दौर का खात्मा है, लेकिन अपनी शायरी अपने अल्फाज और अंदाज के साथ हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगे और हमारे लबों पर उनके गीत उनकी गजलें हमेशा यूं ही मचलती रहेंगी। उनकी गजलों में मोहब्बत

अभी आप सुन रहे थे मारूफ शायर डॉक्टर बशीर बद्र पर उर्दू सर्विस का ये पुरखलूस खराज अकीदत, एक ताजियती प्रोग्राम। पेशकश नवीन कुमार की थी। मीडियम न्यूज 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश हैं चंद फिल्मी नगमे।

और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये नगमा था प्यार झुकता नहीं फिल्म से। अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की फिल्म है मिस्टर आशिक।

0: सिंध की आवाज में नगमा हमिया को बॉबी फिल्म से सुनवाया। इसके साथ ही फिल्मी मौसीकी का आज का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शाहिद हबीब। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बेमिसाल कामयाबी थी, जहां भारत ने पाकिस्तान को चार दिन के अंदर जंगबंदी की दरखास्त करने पर मजबूर कर दिया। भारत आने वाला तेल टैंकर निसोस केरोस ने कामयाबी से आबनाई हुर्मुज को पार कर लिया है और वो अगले महीने की 3 तारीख तक विशाखापट्टनम पहुंच जाएगा। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया है। आईएमडी ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निबम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। ऑपरेशन सिंदूर पर मबनी यादगारी किताब का इजरा करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक गैर मामूली कामयाबी थी, जिसमें भारत ने सिर्फ 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को जंगबंदी की दरखास्त करने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन उन तमाम जंगों से मुख्तलिफ था जो भारत ने अब तक लड़ी है। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में राजनाथ सिंह ने कहा कि यह इशात सिर्फ तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इसमें बहादुर फौजियों के जाती तजुर्बात और जज्बात की भी अक्कासी की गई है। उन्होंने कहा कि यह किताब जदीद अंदाज की जंग के इंसानी पहलुओं को भी उजागर करती है, जहां क्यादत, जुरत, दबाव के माहौल में दुरुस्त फैसला साजी और अज़्म व वाबस्तगी हिकमत अमली को कामयाबी में बदल देते हैं। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि यह किताब उन जाबाजों को खराज तहसीन है, जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाबी से अंजाम दिया और अवाम को फौजियों की कुर्बानी, लगन और साबित कदमी से करीब से रोशनास कराती है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि इस किताब से तहरीक हासिल करें और ऐसे जिम्मेदार शहरी बने जो मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ्फुज़ के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों की कदर कर सकें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि इनकिसारी, अफवो दरगुजर और महजब रवैया शख्सियत का असली जेवर है। संस्कृत का एक कौल शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इन खूबियों के साथ मुल्क के अवाम एक तरक्की याफ्ता भारत की तश्कील के लिए तेजी के साथ सरगर्म अमल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अकवा मुतहदा की अमन कायम करने वाली अफवाज के माबेन बैन अवी दिन के मौके पर दुनिया भर में अमन कायम करने वाली यूएन अमन फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने अकवा मुतहदा के अमन कायम करने के मिशन के तहत अकवा मुतहदा की अमन फौज में खिदमात अंजाम देने वाली बहादुर मर्दों खवातीन फौजियों की सताइश की, जो आलमी सतह पर अमन और सलामती को बरकरार रखने के अपने अज़्म पर कायम हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तिजारत और सनत के 50 से ज्यादा सरबराहों के साथ एक गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। न्यूयॉर्क में भारत के कौंसलेट जनरल और भारत अमरीका स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम ने मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की मेजबानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने भारत की तेज रफ्तार तरक्की इस्लाहात पर मबनी तजारती माहौल और आलमी सरमायाकारों के लिए वसी तर मौके पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में आलमी सरमायाकारों के लिए मौके वसी करने, इस्लाहात पर मबनी कारोबारी माहौल बनाने के तय भारत के अजम को दोहराया। जनाब गोयल ने कहा कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारत की मजबूत तरक्की की दास्तान को उजागर किया। उन्होंने भारत अमरीका तिजारत को वसी करने, सरमायाकारी में इख्तिरा पैदा करने और मुश्तरका खुशहाली के लिए

0: chinga tes shao tutpe ka chwe di chati tu jiu ji nga ti de solve ka chwe di tutpe no chemical ma kafi on chin su donis u de shani ka dukse do sang ma kafi problem bachinia dona nga ti shawa kafi mala packet ba se frozen ba se on the packet ba se preservative on donis de tata zins in chemical sun donis ma kafi ata cancer problem bachin even nga ti science on is just thinking ati mara barga packet original aminda doni na preservative on chi मतलब टीन इट फूड होमिंदा टीन इट तंग आती देर ग्रामो छाने टीन फूड यों छा सपोज मना दोनों प्रिजर्वेटिव यों छा ना मतलब दादी रे दो रुपए आती बाजार है केमिकल गां से छा ना दोन सख्स बसे दादी माहौल पर चेंज छेंदुक पांगा डिसहार्डनिंग छेंदुक 10 साल 30 साल 40 साल 50 साल ने अनुक दू छा ना था डिसहार्डनिंग छेंदुक कसा छा ना आती मीमांग सुन ला दी चीज सुनी अवेयरनेस पर मना जरूरी
1: Dentist Dr. Sajjad Hussain surgeon kanar deluxis kurlati segen in pin medium of don fm kadiu akashwani kargilin was potusot agana mertsum chusagasun su kaseta sherbanachi fia program prachugetngen mazat program prachukan pin asghar ali

0: جات پونگا تی دی معدا پو اینانگ اور تمام یعنی کی دوائی جات پونگا تی پرہیز پینانگ چھاننگا تیس ادھے زن کونی گنے دیرین احد بوس کی ادھے زنونی گنے گا چیس پرہیز بیت کی دونگا تی جیسو می بھیلا نخصاندی اینانگ اور گا چیس دیل تاو دی معدا پونگا چیس صاف جخصے ماتی ذہن کن صاحب لوشو پت بھی فرنگا چیس احد بیت زرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है. उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा. सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडबरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुँचने की आशा है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए. न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी. इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी. पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी.
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था. अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है. इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं.
1: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा. केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता. असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया. भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अकादमी की शुरुआत की है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह अकादमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही. यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की. म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी. IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा. इसके साथ ही

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दरेंटेस साइंस मैगजीन प्रोग्राम यानिपिन मीडियम वेव दोन एफएम के थ्रू आकाशवाणी करगिलिन वास्पोतुस तोरुनना मेडिगिशुर सगासोंसु कसता पुरगे खबरन फचुगेत नियन मसत

0: Fayuli Wazir Azam Jinab Narinder Modis Bharati Mimang Sunna Yambo Grakcha In Khuri Singh Speraun Yongmi Aditi Jaga Nimi Baja Chukshi Ka Program Man Ki Baati Strolika Akashwani Station Gangmas Di Program Pong Yambo Nashir Bachain Domen Ma Durdarshani YouTube Channel Dona Prasar Bharati App News On Air Ka Di Program Pong Nashir Bachain Idu Jagpazat Yongmi Aditi Jaga Nimi Baja Chukshi Ka प्रोग्राम मन की बात
1: रंगी बिजनेस उल्लास के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलन उन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब पिल्ले पीस कप्स मांगमो दरने यंतेस नंग या दफ्तर या हाटी का जुक से नंग बांग यंचाइन

0: आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनिका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंगिन से होत बुकिंग बेफिया कॉल बाजत 8700014242 का।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
2: 8700014242।
3: सुनो ना।
1: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: मीडियम वेव दोन एफएम के दिव आकाशवाणी करगिल आकाशवाणी श्रीनगरी के नर्दी खबर न तबसरा रिले बेत रिले लाटा पास।

0: शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम टोटली कमिटेड हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
1: प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने कहा है कि मन की बात रेडियो प्रोग्राम अहम मसाइल पर लोगों को तरगीब देने का एक मजबूत आला है। सदर मौसूफ ने पार्टी की जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा की मौजूदगी में बीजेपी महिला मोर्चे की एक मीटिंग की भी सदारत की, जिस दौरान मरकज में एनडीए सरकार के 12 साल की तकमील पर हसूलियाबियों को उजागर करने की मुहिम का जायजा लिया गया। पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप महोत्रा ने मौजूदा गर्म लहर के चलते जम्मू खत्ते में बिलाखलल बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की मांग की है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर ने उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़यादत सरकार को यह कहते हुए हदफ़ तनकीद बनाया है कि यह हुकूमत जमीनी सतह के हकायक से दूर है। एक बयान में पार्टी के सदर जीएम शाहीन ने वज़ीर आला की ज़ेरे क़यादत सरकार के अवामी मसाइल से उनके बकौल बेएतना होने पर तश्वीश का इजहार किया है। महकमा आला तालीम ने सरकारी डिग्री कॉलेजों में यूजी दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म जमा करने और कॉलेज तरजीहात अपडेट करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। महकमा आला तालीम के मुताबिक उम्मीदवार अब कल यानी 30 मई शाम 5 बजे तक दाखिला पोर्टल jkadmissions.in पर अपनी दरख्वास्तें जमा या अपडेट कर सकते हैं। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: जो लास्ट डेट था सबमिशन ऑफ फॉर्म वो 27 5 बजे तक था, अभी हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमारे पास सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेशन आई थी तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब 30 तारीख 5 बजे तक लिंक खुली रहेगी और मेरी गुजारिश है कि स्टूडेंट्स के साथ कि वो अपनी च्वाइसेस चेंज कर सकते हैं। अभी भी हमने जो उनका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया है तो उसको भी देखकर वो अपनी च्वाइसेस बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलेज वाइज और प्रोग्राम वाइज। तो ये प्रोसेस सारा अभी 30 तारीख तक स्टूडेंट कर सकता है। तो 5 बजे लिंक बंद हो जाएगी, फिर बाकी जो शेड्यूल है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से लिस्ट निकलेगा और फिर राउंड 2 हो जाएगा और स्पॉट राउंड हो जाएगा।
1: जिला बारामूला के कई इलाकों में आज फिर एक बार जालाबारी हुई जिसके नतीजे में मेवा बागात और फसलों को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। हमारे बारामूला के नुमाइंदे ने खबर दी है कि जिले के गुलमर्ग इलाके में आज उस वक्त आधे दर्जन से ज्यादा भेड़ हलाक हो गए जब तेज हवाओं के नतीजे में वो एक बड़े पेड़ की जद में आ गए। उधर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्म लहर की लपेट में, इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने मुल्क में इस साल जून से सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिश होने की पेशगोई की है। इधर जम्मू कश्मीर खासतौर पर जम्मू खित्ते के बेशतर अजला में भी गर्मी की शिद्दत में रोज अफजों इजाफा होता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के पेश नजर लोगों को कई एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है ताकि वो इसके मुजर असरात से बच सके। इस सिलसिले में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
3: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें, वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सकें।
1: कौम आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी चरण सिंह को उनकी बरसी पर याद कर रही है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और वज़ीर दाखला अमित शाह ने आजहानी को खराज अकीदत पेश किया। अपने अलग अलग पैगाम में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक कदावर लीडर थे जिन्होंने हमेशा देही भारत और किसानों की बहबूद के लिए जबरदस्त वकालत की। जम्मू कश्मीर के बाग मालकान और ताजरों के लिए रेलवे एक बार फिर तेज महफूज और काबिल एतमाद जरिए नकल हमल साबित हो रहा है। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के मुताबिक रवां चेरी सीजन के दौरान अब तक तकरीबन 43 टन ताजा चेरी रेलवे पार्सल सर्विस के जरिए मुल्क की मुख्तलिफ बड़ी मंडियों तक कामयाबी के साथ पहुंचाई जा चुकी है। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने कहा है कि ताजरों और बाग मालकान की जानिब से रेलवे खिदमात का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे फल के मयार और ताजगी को बरकरार रखने में मदद मिल रही है, साथ ही किसानों को बेहतर कीमत भी हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे किसानों को मौसर और कम लागत लॉजिस्टिक सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जूली। ऑल इंडिया रेडियो करगिल के स्टूडियो से मैं एहसान अली बिस्मिल आज के फनकार प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फौजी भाइयों, आज के फनकार प्रोग्राम में आज हम

जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था मौसीकार आजम नौशाद। दीदाए अश्क बार लेके चले, हम तेरी यादगार लेके चले। जिंदगी मुख्तसर मिली थी हमें, हसरतें बेशुमार लेके चले। रूप नगमों के देख के हम नौशाद, अपने दिल की पुकार लेके चले। नौशाद का पूरा नाम नौशाद अली था। वो 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में पैदा हुए। उन्होंने 6 साल की उम्र में संगीत से जो रिश्ता जोड़ा वो मरते दम तक जारी रहा। उन्हें क्लासिकी मौसीकी और लोक गीतों के हल्के अंदाज में पेश करने का फन बखूबी आता था।

धीरे धीरे गुरबत अली ने नौशाद पर इतना भरोसा कर लिया कि पूरी दुकान का काम उनके सुपुर्द किया। ये दौर था साइलेंट फिल्मों का और लखनऊ के रॉयल सिनेमा थिएटर में साइलेंट फिल्मों की स्क्रीनिंग हुआ करती थी। नौशाद रोज वहां जाकर देखा करते कि साजनदार सास कैसे बजाते हैं। इससे नौशाद का शौक इतना बढ़ा कि रोज गुरबत अली की दुकान पर सुबह सवेरे जाते और वहीं धुन बजाते जो उन्होंने रॉयल सिनेमा थिएटर में सुना था। एक दिन नौशाद साहिब धुन में इतने गुम हो गए कि वक्त का पता न चला। वो साज बजाते गए और अचानक गुरबत अली दुकान पर पहुंचे। गुरबत अली के मिजाज को जानते हुए नौशाद को लगा कि आज तो खैर नहीं और गुरबत अली ने कहा कि गुस्ताखी की सजा के तौर पर ये बाजा आज आपका हुआ, जाइए बजाइए, मुझे उम्मीद है कि एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे।

1937 में उन्होंने मुंबई का रुख किया और 1940 में फिल्म प्रेम नगर से अपने फनी सफर का आगाज किया। फिल्मी दुनिया में उनकी रहनुमाई उस्ताद झंडे खान ने की। 1944 में रिलीज होने वाली फिल्म रतन नौशाद के फनी कैरियर का एक अहम संगमेल साबित हुई, जिसके बाद इनकी मौसीकी ने अवाम को अपना गर्विदा बना लिया। नौशाद हमेशा अपने फन में तजुर्बात करने के हवाले से मशहूर थे। उन्होंने क्लासिकी मौसीकी और लोक संगीत को इस अंदाज से अवाम के सामने पेश किया कि आज भी इनका संगीत लोगों के कानों में इस तरह घोलता है।

0: ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
1: नौशाद ने 67 फिल्मों में मौसीकी का जादू जगाया, जिनमें 35 फिल्मों ने सिल्वर जुबली, 12 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और 3 फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई। इनकी फिल्मों में शाह जहान, दिल लगी, अनमोल गड़ी, अंदाज, मुगल आजम और दास्तान जैसी फिल्में शामिल हैं। नौशाद ने 2005 में अपनी आखिरी फिल्म ताज महल की मौसीकी 86 बरस की उम्र में तरतीब देकर दुनिया के मुअम्मर तरीन मौसीकार होने का एजाज भी हासिल किया। उन्हें मुतअद्दिद एजाजात से नवाजा गया है, जिनमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड के नाम सर फहरिस्त थे। नौशाद 5 मई 2006 को मुंबई में वफात पा गए और जुहू के मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए गए।

फौजी भाइयों, ये थी हिंदी फिल्म जगत के उस्ताद आजम नौशाद की कहानी। आज के प्रोग्राम में हमने सुना फिल्म बीजू बावरा, गुलोकार आशा भोसले, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, फिल्म बीजू बावले लता मंगेशकर, फिल्म मुगले आजम लता मंगेशकर, इन सभी के गाने। फौजी भाइयों, वक्त और इजाज़त नहीं दे रहा, आप दीजिए अपने खादिम को इजाज़त, हयात रही तो फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम के साथ, एक और फनकार के साथ। शब बखैर।

अभी आप फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे मीडियम और एफएम पर आकाशवाणी करगिल की आवाज से। सामीन शब के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतजार कीजिए।

0: चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया।

0: उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
1: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। एनएबीएल प्रमाणित लैब वहां उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी

0: के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकी विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31

0: मई तक देश के उत्तर पश्चिमी मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम में 268.8
2: अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंसेस मेजर शिफ्ट इन बॉर्डर मैनेजमेंट लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड फोर लेयर्ड सिक्योरिटी इन्वॉल्विंग सिटीजन्स। Says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
2: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration.

0: देश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में तरंदाजी पर तशवीश जाहिर की है जो आबादियाती तब्दीलियों का बाइस बन रही है। नवन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मरदमशुमारी के प्रिंसिपल असरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाजे किया कि पहले के टीएमसी इंतजामिया ने मरकज की जानिब से बरवक्त खतूत मौसूल होने के बावजूद मरदमशुमारी की कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया था। वजीर आला ने आबादियाती मुंतकली को सरहदों पर बेकायदा ताड़बाड़ करार दिया। उन्होंने उजागर किया कि सरहदी अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मरदमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद शुमार को पॉलिसी साजी और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मिन हांग वांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल के लिए मुनक़दा मीटिंग के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि मुज़ाकरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स के मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती मुजाकरात पर तर्जमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते अमरीका से एक टीम की भारत आमद मुतवक्का है जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी की पैदावार अब तक की सबसे ज्यादा है जो कि तकरीबन 92,000 मेट्रिक टन योमिया है।
2: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्री टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 टीएमटी पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
1: मोहतरमा शर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप से किसी तरह की किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खुर्दा आउटलेट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 150 अजला ने पेट्रोलियम में 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है जबकि 156 अजला ने 30% से ज्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि अपने फैसले को महफूज करने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। अदालत उज़्मा ने यह भी वाज़े किया कि फैसला सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मुकदमों में तेज तर फैसलों की जरूरत है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जमानत की जिम्मेदारियों पर ऑर्डर उसी रोज सुनाया जाना चाहिए, नहीं अगर उन्हें मखसूस रखा जाता है तो अगले रोज उनका फैसला सुनाया या अपडेट किया जाना चाहिए। बड़ी तादाद में हिदायत जारी करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि जमानत या सजा को मुअत्तल करने के ऑर्डर को फैसला सुनाने के बाद जल्द अज जल्द जेल हुकाम को इरसाल किया जाना चाहिए क्योंकि फैसला सुनाया जा चुका है और जेर समात मुलजमान को तरजीही तौर पर उसी रोज या ज्यादा से ज्यादा अगले रोज रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 1,74,000 क्विंटल का कौमी बीज का जखीरा कायम किया है। नई दिल्ली में ज़राअत बराए खरीफ मुहिम 2026 पर कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मीडिया से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब तक 9,76,000 किसान शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों तक रसाई के लिए अलहदा दस्तावेजात की जरूरत नहीं होगी। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुराज़्म है कि खादों का इस्तेमाल सिर्फ जर्री मकासद के लिए किया जाए।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध

0: कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशां होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान का इनेकाद बगैर किसी खामी के मुनज्जम और मुनासिब ढंग से किया जाएगा। उन्होंने इस काम को पूरा करने में हर किसी से तआवुन की अपील की।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: तलबा से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने सख्त फैसला किया है क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अहल तालिब इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहान माफिया के हाथों में न पड़े या बेजाब्तगियों का शिकार न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में होने वाली खामियों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की बेंच इस मामले पर दरखास्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को एक मजबूत और खुदमुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनेकाद के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरख्वास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसकी समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि इस मामले में कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट यूजी 2026 इम्तिहान के उम्मीदवारों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। ये इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होंगे। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दिन उनके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया और वजरा की कौंसिल को फौरी असर से तहलील कर दिया। ताहम उन्होंने मुतबादिल इंतजाम न होने तक सिद्धारमैया से निगरान वजीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने को कहा। वाइस एडमिरल अजय कोछर ने आज भारतीय बहरिया के 48वें नायब सरबराह का ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर करके मुल्क की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया। पुणे की बावकार नेशनल डिफेंस एकेडमी के साबिक तालिब इल्म रहे वाइस एडमिरल अजय कोछर को जुलाई 1988 में भारतीय बहरिया में कमीशन किया गया था। मिसाइल और गन सिस्टम के माहिर अजय कोचर ने अपने 37 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर के दौरान कमांड ऑपरेशनल और स्टाफ असाइनमेंट की वसी तर जिम्मेदारी संभाली है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता सिफारती मुजाकरात में पेशरफ्त हुई है क्योंकि दोनों फरीक मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत को 6 दिन तक बढ़ाने और आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के मफाहमतनामे का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने तस्दीक की है कि मुजाकरात शुरुआती समझौते तक पहुंचने के बेहद करीब हैं। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी मंजूरी अभी जेरे इल्तवा है। इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तेहरान लफ्जों के बजाय ठोस कार्रवाई का मुतालबा करता है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: मलिक तावन काउंसिल जीसीसी ममालिक इस मामले में हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। कतर ने अबनाए हुरमुज में बहरी कवानीन से मुतालिक हतमी नुकात तय करने के लिए तेहरान में अपनी खसूसी सालिसी टीमें तैनात की हैं। दोहा भी जारी किए गए ईरानी फंड्स के सख्ती से इंसानी बेहतरी के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फरीक पर मबनी मुनज्जम मैकेनिज्म के कयाम पर काम कर रहा है। मजीद पेचीदगी लेबनानी नुक्ता नजर से भी है। तेहरान सभी इलाकाई महाजों का अहाता करते हुए बाहमी मफाहमतनामे पर जोर दे रहा है, लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयां और नकले मकानी अहकामात इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट पीटी

نسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد

राष्ट्रीय सैनिक संस्थे गोम्बाउ नि स्तोद्रा बेन अर्गेस्ट्रिति मिंगना स्ट्रोक्स कोरखा नुनिका नार बा सोंग कारगिल जिल्ले लेखमो नार देमोफिया डुलेन योपी ब्यूटिफिकेशन एंड क्लियरेंस ड्रेव पोस्ट तनपो जागेन जिल्ला इंतजामियास माइल जिंग इशुरसाजरुगा बारुना तितिचुमिगी मिर्गोस्पी दोनार गोजदोद मेटपी बिजली पोल उन्ना तारुन लोक निवासिकना बारु मेन बाजार स्थिति चुमिक चकपा थेने इंदी ड्रेव पो ए डी डी सी करगिल गुलाम महमती जेरलुक्सियां लेफ्टिनेंट गवर्नरी जेस पेका मल्ला ख्योंसी इन दियाना जागेदी इला सुन चना अहलकारों ने जेर बावना जोम से जिपचू थालेर गोजदोत मेटपी पोलून तक्सपा बसे इन यांग यों मी वक सुनियां दी पोलून छिरना जोम से थेंचा इन इंतजामियस दी ड्रेव पो म्यूनिसिपल कमेटी कारगिल रेवेन्यू डिपार्टमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बीएसएनएल दोना एयर टेलीकॉम एजेंसी नी रोक्सना लखथुतिका मल्ला खोंसी इन अथॉरिटी नी छोक्सना आवामंग फोंगा दी लसुन चना लखथुत जोग जरे जुआ बसे इन दी पोलुन थेंचाओ सरगेला मिल जों सुनला गाड़ियों नी डुलमांग सामो दोना लामुनला फाल सोंसे इन चीफ सेक्रेटरी यूटी लदाखे खसकोना जोमसे डिप्टी कमिश्नर वासीओ करगिल राकेश कुमार इस जिले छोगो इंटरप्रेन्योर्स निशुआ कॉन्फ्रेंस हाल बरुआ तंफो ग्रफो बसे इन दी वक्सला जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर डी आई सी करगिल आंग जुक्से योत्पिन यांग दी ग्रासपो दी इंटरप्रेन्योर शिव उनीफिया मशरूम शिंगलास फर्नीचर चोचा डायरी चलागुन बेकरी यूनिट ऑनलाइन डिजिटल फूड डिलीवरी सर्विस गुंचे डिजाइनिंग हैंडलूम दोना हैंडक्राफ्ट चलागुन सीमेंटी पकबूर चे यूनिट दोना ए यर्गिया छीन योत्पी सेक्टर उन्नी इंटरप्रेन्योर सुन जुक्से योत्पिन ग्रब सना इंटरप्रेन्योर सुनिस खाकचन श्मंग खाची गाँव निज जिले सनद ला यर्गिया सियांग छीन योत जिले डिप्टी कमिश्नरी छनला जखपा सोंगखोंग इज ब्रांडिंग पैकिंग मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन न सनअती यूनिटिफिया सनअती सख्यात मेचा चोक सुषमा उनिका सल्पो बसे जरबा सोमिंदी वक्सला सक्सेस स्टोरीज न तजुर्बा उन जरें जिल्लेंग दी फिया किमो क्यूद यो जरबा उनचुकसे इन डिप्टी कमिश्नर कारगिलेस खोंगी दी स्पेरा उनिका थतखा बेंद्यू जिल्लेंग बेरोजगारी निंचे बे फिया रोक छेन यो जेस खोंग एजियां जिल्ला इंतजामियास दोना यूटी इंतजामियास दी फिया फ्योक्स ना रोक श्ताने जाक्चा इन जरे छत बसे यो जेस यांग दी यार्ग्या सिफियार गोस पीर रोक संग तांचा इन जरे छोर तांस डिप्टी कमिश्नर कारगिल राकेश कुमारिस माइल्जिंग इशुरसाजरुगा लोखसो सनती यूनिट उन्ना स्टार्टअप सुन्ना जिले लोखसो मलसाव नियांग जिक्सकोर बसे तालुक्स बा सोंगमिन लदाखा यूटी थोपसेर गैपना जवान इंटरप्रेन्योर सुनला शंटे रुख सुन खोंगिस समझुन ना वेंचर उनलार ग्याला ना रुख छा चुकपी फिया मल्ला क्योंगन योद जेस दी जिक्सकोर पुत सना डिप्टी कमिश्नर इज लदाखे कार्विंग यूनिट कुर्बाथांगा दोना हलमान एब्रिकॉट कारगिल ला जायदी वुड कार्विंग ना मशरूम कल्टिवेशन यूनिट छनेगोनी जिक्सखोरंग बास सोंगमिन लद्दाख कार्विंग यूनिट पेका अहमद अलीना अब्बास अलीना ग्रखसे डिप्टी कमिश्नर खोंगेदी फ्रालुक सुनिस रिवायती शिंगकोसी लसुन सोमाना जदी टेक्नोलॉजी कोले बची का स्तोत्रा बासोंग हलमान एब्रिकोट कारगिल ला दी एक्सपीरियंस बोस खोंगा सोमा जोस्ते टेक्नोलॉजी रोक्स बोस जेस डिप्टी कमिश्नर खोंगा देंग सख्यात पा खिमो कोऑपरेटिव सोसाइटी नि स्ट्रोलिका स्ट्रेसे ड्यू लास केत तों जरे खसको तामा सोंग इंटरप्रेन्योर सुनेस वजीर अजमी रोजगार योजने ला सुनिका सिंखों बेन शोक्समो दी सब्सिडियून फुते तों जेस खोंग इस खोंगी चाला गुनी नुब्रा ना लदाखी ए मलसाव न्यांगनुगां शंटेर गोजदो दियोत जरे गोंचुपा सोंग कसायां खबरचीक लदाख एस्ट्रो वीक 2026 न जुमसे लदाख सी सेरियां सी महकमास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो फिजिक्स से लखथुतिका एस्ट्रो टूरिज्म न जोमसे प्रोग्राम चिक टीवी स्टेशन कुर्बथंगीमोर ला पूरी गेस्ट हाउस यंग प्रोग्राम चिक मल्ला ख्योमा सोमिंदे वक्सला असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म महमद अली टाक दोना ए महकमा सगे ऑफिसर उन सगंग जुक्से योत्पिन यंग टीचिंग स्टाफ सक तालीमी इदारा उन्यांगनास क्योते योत्खन इनमिंदो न डिग्री कॉलेज करगिली उस्ताद सांग योत पिंदो ना सकाफती